0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वही महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with the participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the programme focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilisation at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras

के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L-69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L-69 और C-10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाउरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शन से हार का सामना करना पड़ा।

0: 아니 기초 그나마 스카는 손작 사만이 방금은 가면 아니고 그나땅이야.
1: 나 잠글 잠글

Ready, Lupa!

والترمام وبكية جمام مغنيزا وعوينام شاكر مكنيسة جمام.

Kana

Ra cho nó mà mình dạy giúp mẹ.

Ramon.

Sana zannet ettirip seni nasyonunu.

0: 만대왕이 삼파봉 농구하고 절차크 라켄이 미등호 나시망 다생케 마라그네 아간타라빠니고 그냥 수화하 남은금은 브라몬 그스 남은호 그냥 남은 스카겐
1: इतनी रात में एसएमएस केवाईसी अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Logo menesin ayağa dop kontak etmiş kanya.
5: Plus F'nin konu ya çünkü.
4: Ya plus F'nin gibi bir kilise de yapmam gerekiyor.
5: Nama sana. Jelistan'ın ağaç anı yankı çağın. Gönü ko, lakat kıpa, mağrakat kıpa. Aru çoğun gibi vitamin yankı dağın. Mandiri çamşuan ko bilgiyatta. Aru BN bir yankı da numata. Uni gibi nasa çağın yankı briyon. Plus F'nin yankı pa kusa brevo. Una vitamin aru ayın gınan. BN bir yankı mağrakat na aruan. Sen balcaki rakhina gıta çağın bostu yankı briyon. Plus F'ni çoğun gınan.

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट। सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जन जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
1: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिले के बड़ी गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिलाओं और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा मिली है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: वही आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रह है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
1: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से

0: 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षत के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी न हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की से अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नागरिकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व और सूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय

0: Сападаке. У нас от нам всем мусульман хан ки жюри не пуруш дебл искас на кайлс паду не танц падак апне нам кия. Бхарати жюри 1500 метр так дусре стан па ти, лекин антим 500 метр ме тисре стан па аги. Иссе пехле Сатнам Сингх не хан жу ише кхелу ме пуруш квадрипл искас ме бхи танц падак джита та. Узбекистан ке Самарканд ме чал рахе фидел шатранж олимпиад ме бхарати пуруш тим не шандар прадаршан карте хуе сатве даур ме инглэнд ко дер ке мукабле 2 анко се хара дия. कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वही महिला वर्ग में बी सरताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सरताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी है और इस धमाकेदार जीत ने भारत के पदक की उम्मीदों को मजबूती रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उड़ीसा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आयोग ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत के 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में ऋषभ देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुश डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Rosha Vinod Devi bagged silver medal and Rosha

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से इस समय संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच है, हम करतल ध्वनि से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में 10 अलग अलग जगहों के राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां से हमारा रूट अभी पहुंचा है, वहां पे सभी सेवा यात्री मौजूद है। वहां के गांव के जो वहां के नागरिक है, वह कोई कुछ लाभार्थी भी मौजूद है और साथ में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी भी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में इस पूरी यात्रा का अब तक का ब्यौरा आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चल रही इस यात्रा के हर सेवा यात्री की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 2001 से आज तक आपके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश के युवाओं को एक नई सीख देते हैं। पद कोई भी हो, सेवा का संकल्प सबसे बड़ा होता है। इसी प्रेरणा से युवा मोर्चा ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह यात्रा आरंभ की है, जो चार भावों पर चल रही है। जल, पवित्र नदियों का जल, हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ाव। जन, हर गांव हर वर्ग से सीधा संवाद और संपर्क। सेवा, इस यात्रा का केंद्र बिंदु, हर पड़ाव पर सेवा कार्य। और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प जिस पर आप खुद चल रहे हैं। 17 सितंबर को यात्रा वडनगर और काशी से एक साथ आरंभ हुई। भारत की पवित्र नदियों के नाम पर बनी 20 टोलियां 10 राज्यों के 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर यह यात्रा गुजर रही है। वडनगर से चले यात्री गुजरात की नदियों का जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे और श्री काशी से चले यात्री उत्तर प्रदेश की नदियों का जल लेकर श्री हाटकेश्वर महादेव वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस स्टेशन इलाके के दयानाथपुर गांव के पास हुई। ये स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस में आग लगने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना तथा लागत में कमी लाना है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए 2 बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की राजकीय यात्रा पर कल अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट पीस एंड यूज पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नौरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिदे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi to interact via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. Now we go over live to the function where the Prime Minister is interacting with the participants of Seva Yatra.
1: 1469 वृक्षारोपण हुए हैं। टोटल सेवा यात्री जो जुड़े हैं वो 536 सेवा यात्री जुड़े हैं। टोटल पब्लिक कनेक्ट जो हुआ है वो 50,460 लोगों से उनका संपर्क हुआ है और टोटल स्वच्छता जो अभियान हुए हैं वो 41 स्वच्छता अभियान अभी तक हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 20 दिनों के लिए यात्रा का हम विचार कर रहे थे, क्योंकि ये यात्रा ऑल टेरेन ऑल वेदर एंड ऑल डे यात्रा है। रन में से भी ये लोग गुजरे हैं, बारिश में से भी गुजरे हैं, बहुत कड़ी धूप से भी गुजरे हैं और कई बार थोड़ा उन्होंने ठंडी का भी अनुभव किया है। फिर भी इस यात्रा का रिटेंशन रेट 90% है। कहीं कोई यात्रियों के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई हो या उनका कुछ शिक्षा को लेके परीक्षा देना जाना हो, इसके सिवा एक भी यात्री अभी तक हमसे अलग नहीं हुआ।
0: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. MOUs have also been signed with various institutions including Lucknow Airport, Lucknow Metro and Lucknow Police. Referring to Prayagraj Mahakumbh 2025, the Chief Minister noted that lakhs of young people help devotees to reach Sangam on their bikes through Rapido. They also help pilgrims to reach railway station and airport from Sangam. At least 9 passengers were burned to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. The Bihar registered sleeper bus was travelling from Noida towards Agra and reportedly had around 35 passengers on board. The bus suddenly caught fire near Dayanathpur village. Jewar police has filed an FIR in this regard and started the investigation. Police said the identities of the 9 deceased passengers had not been yet ascertained. Efforts are underway to identify the victims and inform their families. The cause of the fire is yet to be established. Chief Minister Yogi Adityanath has expressed condolences to the families of those killed in the bus fire and directed officials to ensure proper medical treatment for the injured. Indian Wushu player Roshibina Devi Noram signed off with a silver medal in the women's 80 kg sanda event at the Asian Games after losing 0-2 to China's Zhang Jiaoyi in the final at Nagoya in Japan. It is the third Asian Games medal for Roshibina, who won a silver at the 2023 Hangzhou Asian Games and a bronze at the 2018 Jakarta Palembang Games. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won bronze medal in the men's double sculls event this morning. The Indian pair stayed in second place until the 1500 meter mark before slipping to third in the final 500 meter. And reigning world champion D. Gukesh and R. Pragnananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDHS Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
2: This is Akashvani Turu. A very good morning, listeners. This morning we bring you a talk on The World I Now Global Village by MJ Dev.
3: The world is now a global village. A person takes breakfast in London, lunch in New York, and dinner with sushi at Tokyo, all in one day. That's where the world is moving today. A person can travel from one end of the world to another in a matter of day. It is an advancement in aviation and information technology that shrinks the world.

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फनी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनी और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बनता है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

तो इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा, ऐसी ही कुछ

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें

आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान क्योंकि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्मा गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती है।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खोटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने तीन फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई, जिसके गाने आज भी हिट हैं।

Hey!

इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत बगाई द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

अधिकार उन्होंने ही हिंगल सनमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जाबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कोविड महामारी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। ये गाना
1: जब मैं भाई के छोटे छोटे बच्चों के साथ भीड़ मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन
1: बहुत ही बुरा किस्म।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
1: हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 마지막 자수분에게 그런 거 막간이 소매 본 가면 박사만을 급하게 그런 거 크라스나 나하 이런 박사나 직보관은 소금은 소매랑 바이는 뭐나하 나우선은 지금까지 및 고아치와 내시망 대리는 그 거다스카잉 바 비빅 버티 프로그램으로 앞선 스테이션 건 힌디 잉글리스 공부란 거 봐. 크라스나만 안 게니야라 카스페니 투라.
1: जी, तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे वो रविंद्रनाथ टी मंदिर में पहले शो सुबह 6:30 बजे, दूसरा 9:30 बजे, तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे और पांचवा रात्र 9:30 बजे।
2: अरे बाप
1: एक
2: रे,
1: ही
2: तो
1: स्टेज पे
2: ये
1: फुल
2: स्टैमिना कहाँ से लाते हैं आप?
1: तब था ये भी 20-30 बरस पहले की बात।
2: क्या बात
1: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या,
2: आप चुनौती देते थे।
1: मुझे ही रहता तुम। हालांकि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है।
2: जी, हमने सुनील फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं।
1: ज्योति कलश से सुने
2: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश।

0: दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्राचे लोकधारा, तो एक तो प्रोड्यूसर जो थी किरण चित्रे, उसको हम लोग ताई बोलते थे, किरण ताई, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। साबे साहब ने हमें, देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपका कोई काम देना हो जाएगा। अच्छा
1: जी,
0: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने, और शिक्षकों को मैं फोक म्यूजिक
1: जी
0: एक एक एक एक जो समझाते थे, वो ये ऐसा है, ये क्यों है, तो ऐसा है, क्यों है, ऐसा है।
1: वाह,
0: तो बहुत सारे मिले हैं उधर से।
1: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो कोड़ी गीत आपने किए, आनंद चिंदे मिलिन चिंदे वाले?
0: हाँ, कोड़ी गीत किए, लेकिन वो जो वैसा होकर के जो कोड़ी गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
1: जी,
0: वो मैंने नहीं किए।
1: अच्छा,
0: वो ज्यादा पॉपुलर हुए आनंद शिंदे के, वगैरह कोड़ी गीत इतने पॉपुलर नहीं हुए।
1: हाँ,
0: उनके जो पॉपुलर हुए गणपति के गाने पॉपुलर हुए
1: जी,
0: तो
1: इतना दौर था।
0: हाँ, क्या हुआ उस टाइम, मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री, और बहुत कैसेट उससे सब लाए थे मैंने, ओंकार सोरभा घर में लाया, सुबेड़ा भैया, एक्स वाई जेड।
1: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जम्बो जेट गा रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो क्या है,
0: अशोक में गाना था
1: जी,
0: रेलगाड़ी में।
1: अशोक कुमार ने गाया।
0: तो वो सुन के, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है
1: जी,
0: बहुत तौर से कर नाम का, यानी उसके अभी सब्सक्राइबर लगभग 10 लाख है। हम लोग पहले वो रूपारेल का लड़का, मैं और भैया का, लेकिन दोस्ती हो गई। तो वो गाना रेलगाड़ी सुन के उसको, और तब जम्बो जेट आया था नया नया, 67-68 जमाने में, तो उसको बस ये हो गया कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो। तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया वो, और लास्ट नियरली 50-55 इयर्स वो मेरे प्रोग्राम में मैं गाना गाता हूँ।
1: अच्छा, तो वो तो हम सुनेंगे आपसे, जब बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों उस गाने से बहुत लगाव है?
0: इतने अलग टाइप का गाना है वो, वसंत देसाई का एक अलग एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसके पहले में कैसा जो रैप सुना नहीं था
1: जी जी,
0: ये जो रैप आ गया तो बहुत मजा आया सुनने में।
1: अच्छा,
0: बोलने में वो जो
1: इतना पूरे याद भी है,
0: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं।
1: हाँ,
0: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए
1: जी, सुनाइए ना प्लीज।
0: अभी इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी क्या मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
1: यस,
0: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक।

0: dikit, pajerangan, haramadan, gudak kisan, menir makan, cai ku depan. Ada pelipa ke dandi, kele pe yandi, panik ke kon, pencet ke jun, cupri, jadi, keti, wadi, badul, dua, mota, kuwa, kuek ke piche, bag, bagiche, dobi ka ghat, mangal ke ghat. Hari gaon mein mela, bhirj mela, tuti diwar, tattu sawar, rel gaadi. Ye bahut lamba ek,
1: bilkul bilkul, kya baat hai, ab jamboriyat sunaiye.
0: To jamboriyat ka thoda sa मराठी होने से वो थोड़ा सा जीवनी आसन है। अरे जंबो जेट सुई जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगो वसलो बन्ना भेट जंबो जेट सुई। अरे घराला लड़का दाराला सड़े तो पकड़ ली गाड़ी ने निघाल तरह विमान तो आवर ठोकते तरह भारत सोडून काढतो पर उंच आकाशा मधले ढोर चमकून पाणी सारे जग भेदून गेले एक विमान पंखा वरती होऊन ता पंखा लात्या पंखे होते विमान आला शेपूट होते वायुसागरी तरते बेट जंबो जेट जंबो जेट सुरेश वाडकर का
1: जी जी
0: तो उनका महोत्सव होता था तीन दिन का।
1: हाँ
0: और तीन दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा जयकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर
1: जी,
0: और तीनों में मैं था।
1: हाँ आप अरेंज कर रहे थे या बजा रहे थे?
0: मैं बजा रहा था, मैं तब कीबोर्ड बजाता था
1: जी।
0: तो उत्तरा केलकर के साथ बजाने को गया तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई तो कौन पर बोला ये गाना फरमाइश। मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र सेठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
1: अरे
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया।
0: हाँ दो पांच दस पंद्रह चिट्ठी तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने।
1: हाँ हाँ
0: तो कैसे बोलते अरे अपे
1: वो बहुत मजाकिया
0: भी है कि बिल्कुल अपे अरे बाबा काहे ते जंबो जी जंबो केवड़ा चिट्ठी आले हाँ वो तू गा वो खुद बोला। हाँ। तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर,
1: क्या नजारा होगा वो
0: वाला, वो खुद खुश हो गया अरे क्या बात है बोल तो क्या तेरा गमछा क्या हो गया।
1: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने
1: जी।
0: अच्छा अपना बड़ा करे तो नाम हो गया तो स्टेज पे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे क्या कर रहे हैं कुछ पूछते भी थे। वैसे मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आएगा आपको कुछ आया कि क्या फलन है तो उनको समझ लेना एज ए सीनियर। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कि कुछ नोटिशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो दे अभी हर एक को मैं कहा लिख के दू। एक प्रभाकर आएगा तो पुस्तक ये करने का और वो मेरे गुरु जी के पास गया प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि

0: मराठी में बोला, मास्टर मला लिहायला त्रास होतो, मैं हेल्प करून बोले, तू लिख इनिशियल, मैं चेक करता हूँ पूरा। तो ऐसे हो गया, 30-35 गाने का कुछ किया था
1: जी।
0: उसमें। मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए, समझो भक्ति गीत, भावगीत, एक्स वाई जेड, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए, उसका नोटेशन भी मैंने उसका ऐड किया था।
1: क्या बात है, सुंदर।
0: वंदे मातर और जनगण मन
1: जी। मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल,
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए हिंदी।
0: आरडी बर्मन का,
1: हाँ
0: मुझे ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना, वो
1: चतुर्नार,
0: एक अलग टाइप का गाना है, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना
1: जी,
0: तो वो सुनिए।

Ya, kaca turun, nah, ada, apa, suara, kan, ya,

चतुरा गोला चतुरा एक पर है ना, या गोला बोला या चतुरा बोला।

0: अब आपसे पूल्य देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
1: उनका एक एनसीपीए का प्ले था,
0: जी
1: उन्होंने लिखा हुआ, वामन तेनेरी का उसको डायरेक्शन था, और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानड़े नाम के,
0: जी
1: बहुत ज्ञानी आदमी, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड और इसमें मैं, और रिदम में देवदत्त साबड़े, शिवाजी
0: जी
1: साबड़े का लड़का। तो
0: जी
1: रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फुटेज भी एक्चुअली था,
0: हाँ
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अपर को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग, वो एनसीपीए में, वो स्टूडियो में, और 1-1.5 बज गया, हम लोग के कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए, और अंदर से आवाज आई चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पूल्य देशपांडे बैठे हुए सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग पूरा, और जो अंदर से आ गए तो अरे बोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के सामने सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं। तो आए, वाह पा, खूब छान, ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले तुमसे है यंत्रा हथौड़ों का थोड़ा सा, थोड़ा मैं बोला आपको क्या बोले, थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया। फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं, तो अशोक जी रानड़े जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पूल्य देशपांडे बोले कि रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, आपको वही आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट भी है, हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बुलवा लो इससे अच्छा प्लेयर है। तो
0: गजब।
1: पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजाया था।
0: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव
1: हाँ,
0: ये।
1: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो मराठी में जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी, तो हमारे मित्र अभी नहीं है वो, आनंद था मोड़क नाम का,
0: जी।
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की, और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न ऑडियो स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूल्य देशपांडे अंदर है और मेरे बाजू पे कुर्सी में बैठ गए, और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना, और बड़े हारमोनियम, तो बोले फिर भी हो गया, मेरा काम अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है मराठी।
0: YouTube पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं
1: हाँ
0: आप पंची गप्पा,
1: हाँ
0: ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
1: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अभी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी।
0: जी तो ये तो सेंचुरी हो गई
1: वो एक्चुअली क्या, कोरोना के टाइम क्या हो गया, मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का,
0: जी।
1: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है, तो बोला तेरे पास इतना बोलने के लिए, तू इतना काम किया है, तू ये कर ले ना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते हैं, कुछ मालूम नहीं है, बोले मैं हूं नसूर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
0: अरे गजब,
1: अरे वो पैसा कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बोलो तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, अब तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है, तो वो चल हो गया। फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे, और वो वही
0: देखते
1: योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा अभी, तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में,
0: जी।
1: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100th एपिसोड है मेरा,
0: वाह, वो आपने YouTube पे डाला
1: हाँ
0: है
1: यूट्यूब पे डाला है।
0: जी। 100 एपिसोड, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है
1: रिस्पॉन्स ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है,
0: जी।
1: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अभी उसका इंतजार है।
1: इंतजार अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन मैं इसको कर रहा हूँ,
0: जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अलग अलग लोगों को
1: हाँ
0: उसमें याद
1: क्योंकि
0: कर रहे हैं,
1: क्योंकि जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए, हाँ
0: कहानियां सुना रहे हैं, सब
1: तो तभी तो
0: चीजें।
1: मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया, तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
0: हाँ, अच्छा, मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ, सुरेश वाडकर की एल्बम का, वन है खुड़े कसे।
1: वो तो सबका एल्बम है, यशवंत देव का पूरा सुरे सुरेश का 8 गाने का सुन रहे।
0: जी
1: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलेंस, ग्रुप वायलेंस, क्योंकि
0: हाँ
1: मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलेंस मिलते नहीं है, तो
0: जी जी
1: बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वायलेंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो फिट नहीं आता है। लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छी है, जो जो कवि कहे वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत।
0: बहुत लोकप्रिय है।
1: हाँ वायलेंस के तीन गाने जो है मुझे, तीनों गाने उस पर, एक वो गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ एक एपिसोड वो गाने पे है। हाँ
0: जी अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं,

0: हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती है।
1: बजती थी। अभी एज के
0: जी
1: हिसाब से थोड़ा सा थोड़े से फ्रीक्वेंसी कम हो गई
0: फिर भी
1: फिर से।
0: अभी मैं

0: संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
1: बजती थी
0: अभी एज के हिसाब से थोड़ा सा
1: थोड़े से फ्रीक्वेंसी कम हो गई,
0: जी
1: फिर भी अभी मैं

0: हाथ लगा रहेगा।
1: कोई बात नहीं,
0: तो बाद में मेजर डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बाबू इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक मेजर डायरेक्टर को बोला था, तुम धन्यवाद देते हो कि मुझे यहाँ बुलाया है आपने, जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है,
1: अरे आपने बहुत अच्छी से बात की है,
0: कोशिश की है और आपने सब करवा लिया मुझसे, यूनिवर्सिटी तो ग्रेट है,
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पू बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग

0: परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर

कितना बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर

साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। Jana Kastrani to Simon Delanin Apiskalpa, Hindi Homo Kokna Solomon Ahada, Yusomon Bakon, Simon Ada, and Simon.

ऐसा मौसम होना चाहिए। अरे भैया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूम कर देखिए, गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझे। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है या भूल गए? भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर, आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गए? कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है।

अब लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है, और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी भी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता।

आता है क्या जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है गहरी चाल।

ने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी भी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता।

लिखते हैं कि नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूं अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। सर्विस के लिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर पे घूमा हूँ, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही दुनिया, एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही

कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है, और आज भारत के उन कोनों के हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है।

वही एक श्रोता लिखते हैं, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ, मेरा बरेली में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वही एक श्रोता लिखने लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने आपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया है उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली सिक्स, दिल्ली सिक्स फिल्म है, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गए लखनऊ?

बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं।

0: कोने में पहुंचाना ही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना

0: मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की

0: उपनहर के संगीत निर्देशन में ये था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर लिया ना ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचम्बा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उससे दे एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
4: पैदा हुआ।
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेलुलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूं के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: अंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: भाई बाने कुप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके ये कुप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: चाहे कुछ भी कहो मानो फ्री, लेकिन मैं उस कुआवा कृष्ण को मैं किसी की ओर नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
5: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
5: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
4: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
5: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
6: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और परिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इससे पहले रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
5: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses. The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation FIPIC on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. During the meeting, the participating leaders reviewed the outcomes of the FIPIC summits and welcomed the progress in India-Pacific Islands countries' cooperation, including

0: to the 12-point action plan announced by Prime Minister Narendra Modi in 2023. They also discussed further cooperation in renewable energy, climate action, disaster resilience, education, healthcare, and capacity building. Electronics and IT Secretary S. Krishnan has said India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today, Mr. Krishnan said that India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually. He added that five major global mobile phone brands are present in India and are manufacturing their devices in the country. The secretary said the government has launched the mobile phone manufacturing scheme to further scale up production, increase domestic value addition, strengthen supply chain resilience, and enhance India's global competitiveness. The government has reduced the basic customs duty BCD on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. According to police, the incident took place around midnight near Dayanatpur village under the Jewar police station area. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall conditions over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. The weather agency also forecast heavy to very heavy rainfall conditions in Bihar, Jharkhand, Vidarbh, West Bengal and Sikkim today. The United States has said it is willing to explore a limited ceasefire between Russia and Ukraine covering energy and grain. U.S. Secretary of State Marco Rubio said both sides have expressed interest in such an arrangement while stressing that no formal proposal or agreement has been reached. The United States and China have agreed to extend their trade war truce by 2 months, giving both sides more time to work towards a potentially broader economic agreement. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the arrangement known as Busan Agreement will now be extended until January the 10th. And with that, we end this news bulletin.
1: Yamakaswani to an Ismail Biliniko at his King Bardin Tanda Baby Party Program. Unboxing as well as a station in Kun Hindi English Kuburang work Nasunam and Ara. Yamaksana the Alsalan of Zogman Sumerang by Inabunaha. But that only program is among was a lot of Pajini class with Hanam and Angin. Knotum Swing Pasakantikon Matilla and a Kaswani Tura.
2: पेड़ पौधे बड़े बड़े वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं पहाड़ हैं ज्वालामुखी हैं सब कुछ है इसके नीचे और हमारे पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है
3: बिल्कुल और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया लेकिन समुद्र की गहराइयों में जैसा तुमने पहले भी कहा था आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशालकाय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है
2: तो और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है ऐसे जीव है जो तो कोई अंधेरे में चमकता है जेलीफिश वगैरह जो रहती है और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ
3: बिल्कुल बिल्कुल और जरा सोचकर देखो ना आरती कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो इतना ही नहीं जरा सोचिए क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसे ही दिखाई देती हैं
2: बिल्कुल और जो महत्वपूर्ण

0: वास है इनके, और लाल, पीले, नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, ये जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगे हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाया उनको।
1: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की कई सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहां स्टीमर रुकता था वहां की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताजा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
0: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित भी हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और
1: बिल्कुल
0: जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहरा से जुड़ा हुआ है।
1: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं, इसीलिए समुद्र

बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक कचरा

0: अर्थ में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
1: बिल्कुल। और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी

0: साल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही

0: और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
1: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बार्ले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है, तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
0: बिल्कुल। और उषा बार्ले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बार्ले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा तुमने। और उषा बार्ले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बार्ले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
0: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं और धीरे धीरे उषा बार्ले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
1: उषा बार्ले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
0: बिल्कुल। उषा बार्ले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
1: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: तो जब हम इनकी कहानी सुनते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, उस छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे, तो वो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है ना।
0: आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसके बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
1: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जे के कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी। सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शाहरुख हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेलुलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे संदेश, तो जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है?
3: नहीं, बताने की नहीं, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है,
2: ऐसे मन लिखे हुए हैं। हमारे साथी देखो एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाए। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठिए तो फिर मना भी लीजिए।
3: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना कभी अच्छा रहता है, छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती है। मतलब ये चाय पीने के लिए गाली खाद
2: कितनी अच्छी सी बात है, लिख के भेजिए। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंद्र की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है। हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो। दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन में प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
3: नए भी बजते हैं,
2: पुराने भी बजते हैं। आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना?
3: बिल्कुल।
2: तो ये लिखते हैं आगे, लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, कभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
3: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
2: कुछ सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यह रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवन साथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
3: और साथ ही एक साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हो और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
2: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
3: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए। एक आवाज आती है मंजीत जी लिखते हैं कि कब किससे रूठे, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठी रूठी पिया मनाऊं कैसे, रूठी हूँ सनम तो फिर क्या है हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। उन्होंने सारी फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दी है,
2: जब इन्होंने गाने भेजे दिए तो हम क्यों ना इनको एक गाने
3: सुनवा देते।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मैं सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर लिया ना ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर चंद्रमा के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं? हाँ, हमारे साथी जो लिखती है कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ की रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित है, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता है, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो उन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
3: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
2: बिल्कुल। और साथ ही एक बार और साथ ही जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठेंगे, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहाँ अपनापन है वहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
3: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराई को छूता है। रुकना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें बना सकता है। रुकने भी एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तब रुकना स्वाभाविक है। रुकना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुनते हैं जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मुझे एक हमारे साथी जो लिखी भेज रही है कि मैंने जो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि इसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारे साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को वो अलग ड्रॉर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रही है हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ये है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी जो तो लिखते हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं। हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा जाती है, बहन को डांटे लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: देखो, बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त हो गया है।
1: जी
0: पास
1: हाँ
0: सारे
1: तो
0: श्रोता रहते
1: जी
0: हैं, तो सभी से लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे
1: हैं? तेवाल नगर गोपाल से है, बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सेलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई, काम बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है। नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुला था।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे। अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल।
1: आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं।

0: फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला सानू से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया है, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा फिल्म का बोल रहे थे, कौन दिशा में लेके चला रहे बट हुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी हुआ है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल जब आखिरी में आ जाते हैं, आखिरी में आकर गुंजा का निकाल चंदन से हो जाता है गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर, आपको सुनवाती है नदिया के पार फिल्म का ये गाना।

0: ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर
0: अच्छा,
1: जी।
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर जो लोकपन गेहूँ है या 15 44 से इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूँ जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्रों का नाम चलता है उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा, क्या बात है, आपने देखिए कितनी बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर। अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई

0: फसलें उगाते रहते हैं।
1: यहाँ सर हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल है मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला गीत सुनना है सर जी।
0: आपने कहा और हमने सुनाया।

0: फरमाइश।
1: अम्बुला सुशील कुमार बोल रहे सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गाँव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, आलू फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी,
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार गाना बना है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: फरमाइश।
1: यूनिट खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: अजी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है नागिन फिल्म से,
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: जी सर, जब इसकी भीड़ वगैरह बचती थी ना इसमें तो डर
0: हाँ,
1: जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में देखी है ये।
0: अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सुबह 12 बजे में, और 1 बजे से आता है आपका मूवी फ्री टाइम, और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए, पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आर गए हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात
0: शुक्रिया।
1: करने के लिए तो बहुत दिन से तो कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक बात कहूँ, जाली मोटी याद हो कि आपका मूवी बहुत अच्छा लगता है,

0: फरमाइश।
1: जी ठीक हो आप सर?
0: जी आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अभी कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: डिस्ट्रिक्ट बरगाम।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ पेड़ों की बरकत है
0: अच्छा,
1: बहुत।
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगह पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं।
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसमी सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, बहुत पथरी है यहाँ। हमारा वो अलाका है नजदीक है गाँव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाथ,
0: जी, मौसम की
1: बहुत
0: पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं, लेकिन बहुत धूप है गाँव से।
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज
0: ये गाना है आनंद बख्शी
1: जी।
0: के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ, मैं ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा अपने जो है ना भोपाल के पास में है, जो मान लीजिए
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जो रोड है, यहाँ पर यही पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: यहाँ
0: गांव
1: पर
0: की क्या
1: जो
0: हालत है?
1: गाँव को बहुत बढ़िया है, बारिश हुई थी 2-3 दिन बाद, अभी तो सबकी फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, मैंने सुना।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गाँव को ऐसा तो पड़ी है, जो मान लीजिए फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है,
0: हाँ, तो तैयारियां वैयारियां चल रही?
1: तैयारी चल रही है, अभी तो नहीं चल रही है जी मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी पहली बार बात हो रहा है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हो आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म को सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ नहीं आए मैं क्या करूँ जी वाला, कुमार सानू हल्का यही की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनते, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों रेडियो आता था, वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है जी मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारतीय अपना तो चलता ही रहता है जी मान लीजिए, सभी कार्यक्रम आपको चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर। आप सुनो, आपके शो
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: यारा फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार का गीत सुना था आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त है सर, बहुत है सब छोटा लोग मेरे दोस्त है सर। किसका नाम
0: अच्छा,
1: नहीं?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी। साल मतलब कितने साल हो गए? ये तो बहुत खुशी की बात है फिर। क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए यार।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मंपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला कर दी मनोज नाम दे।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा, अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पप, उसमें गाना है राह में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है
1: बिल्कुल सर,
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी, मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल, और एक साल से मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आप जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल, बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राय बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से। मैं
0: अच्छा बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं। मंचाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियाँ देते हैं सर, बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम होते हैं। मंचाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज वन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: बहुत ही प्यारा, सुंदर, प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका।
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधव और राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियाली है चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्र सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की जो मूवी का गाना है चाहूँ मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

तो आज का अगले फरमाइश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867088 यानी 0222867088 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर। दैनिक भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। क्या है कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं कोई नायिका नहीं, न ही कोई कविता हूँ, बस एक साधारण सी इंसान हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रेम में पड़ी एक मामूली सी लड़की। हाँ, मेरे लिए प्रेम वो नहीं जो सबको दिखे, प्रेम वास्ता नहीं, प्रेम उपासना है, प्रेम परीक्षा नहीं, प्रेम प्रतीक्षा है। हाँ, मेरे लिए प्रेम बिना शर्तों वाली शुभ दीक्षा है।

चलो चलते हैं दुनिया से दूर, बहुत दूर दूर, तुम्हारी किताबों से, कहानियों से, कविताओं से। चलो ना चलते हैं किसी टापू पर जहां जुगलबंदी होती है लहरों और झंगुरों की, सफेद जमी को चूमता है स्याह आसमां, चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी तो, है ना, चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी।

हर चेहरा एक कहानी है, हर कहानी एक संघर्ष। कोई भीतर की जंग लड़ रहा है तो कोई बाहर की। एक तूफान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अगर आप प्यार में हो तो भावनाओं का तूफान ज्वार लिए होता है। अगर आप प्यार में हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है। प्यार में पड़ा इंसान खाना पीना सोना उठना सब भूल जाता है। यानी प्रेम के किस्से दर्द की जागीर होते हैं।

जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी स्थिर शांत भंगिमाएं देखकर लगता है आहा हा हा, क्या अद्भुत, क्या ऊंचपूर्ण, शांत चित, प्रकाशवान तुम्हारा प्यार है। जब तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है अथाह प्यार, तो प्रतीत होता है कि दीपोत्सव की कोई सांझ हो जैसे जो तुम्हारी आंखों में ठहर गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें चमक उठती है तब।

कभी कभी हम वो किताब बन जाते हैं जिसके पहले पन्ने पर प्रेम लिखा होता है, हाँ प्रेम, और आखिरी पन्ने पर प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। बीच के पन्ने जुड़ते बिखरते रहते हैं, यहाँ वहां गिरते पड़ते रहते हैं, कहीं लिखी होती है खामोशी, कहीं डरावने एहसास, कहीं घायल मन और कहीं अधूरी ख्वाहिशें, यानी दर्द में लिपटी हुई एक किताब हो जाते हैं हम। हाँ, एक किताब हो जाते हैं हम तब।

इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज करें किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए युगल गीत से। संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, पर लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

तेरी जवानी है गिट कुल ऐसी मांग ना हाँ और गिट बक्सा ना प्यार किया तो उधर ना किया या हिंदी फिल्म में तो इनका उन्हें तो आर्टिस्ट रहने लगा पर गिट रंग को बता नहीं बेनन बोला हाँ दाउ जो जो मगपन प्रोग्राम को खाना मंडे या ना कश्वानी टूरा तो समय दोस्त ने को लाची बाजी और समय हो खोगे ब्रिग पर बाप ने किसान वानी या स्पॉन्सर प्रोग्राम को खाना मंडे

0: जरूरत है किसान लोन धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होकर सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र ले जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम से संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
4: नमस्कार
3: और जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बार बार कहते हैं कि भाई आप खेती बाड़ी के साथ साथ और बहुत सारे काम है जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं उद्देश्य हमारा यही है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़े और लागत है वो कम आए बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों हमारे भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों से पुरानी परंपरा है दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है
4: आज हम बात करेंगे खेती के साथ साथ उस काम की भी जो लाखों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है पशुपालन और डेयरी जरा सोचिए सुबह का समय है पशुपालकों ने दूध दुहा और दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर कलेक्शन सेंटर की ओर चल पड़े लेकिन असल में शशि दूध की असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है क्योंकि दूध की क्वालिटी उसकी टेस्टिंग समय पर चिलिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग और फिर मार्केट तक उसकी पहुँच इन सभी कड़ियों का मजबूत होना डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है
3: बिल्कुल सही कहा कोमल आपने और इसीलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के बारे में हम अपने किसान बहन भाइयों को बताएं तो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही संगठित बाजार तक पहुँच बढ़ाना है
4: सबसे पहले बात करते हैं हम दूध के संग्रह की यानी कि मिल्क के कलेक्शन की तो जब आप दूध को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं उसे कलेक्ट करते हैं उसकी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो उसके बाद उसकी चिलिंग जो है वो बेहद अहम कड़ी मानी जाती है एनपीडीडी एक ऐसी योजना है ये सहकारी संस्थाओं मिल्क यूनियन मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज एफपीओ और अन्य पात्र संस्थाओं के माध्यम से डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ होता है
3: बिल्कुल और प्रमुख उद्देश्य की हम बात करें इस योजना के तो वो है दुग्ध प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन शीत श्रृंखला और परीक्षण सुविधाओं का निर्माण और मजबूती करना और साथ ही देश भर में नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन और साथ ही उनका विस्तार करना है
4: बिल्कुल और यही वजह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को एक ऐसी व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है जिसमें पशुपालक का दूध केवल गांव की सीमा तक ना रहे बल्कि एक संगठित डेयरी वैल्यू चेन का हिस्सा बन सके तो आज की बात को बस एक पंक्ति में याद रखिए साथियों दूध की असली ताकत सिर्फ उसकी मात्रा में नहीं उसकी क्वालिटी और उसकी पूरी डेयरी जर्नी को मजबूत बनाने में है और जब ये कलेक्शन से लेकर मार्केट तक की कड़ियां मजबूत होंगी तो उनसे जुड़े पशुपालकों के लिए भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक्सेस और डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने के अवसर भी मजबूत होंगे
3: तो कोमल ये तो बात रही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की और हमारे वो किसान बहन भाई बागात है जिनकी और फलों की तुड़ाई हो चुकी है और उसके बाद कुछ ऐसे समसमय कार्य होते हैं जिनको करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो अगली फसल है उनको अच्छी मिले उसका दाम भी अच्छा मिले तो फलों की तुड़ाई के बाद वो अपने बाग का प्रबंधन कैसे करें कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है
4: और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चवलेश कुमार आप वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से डॉक्टर साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम में
5: सभी किसान भाइयों को नमस्कार
4: डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जब फल बाग से निकल करके बाहर चले गए हैं मार्केट की तरफ तो उसके बाद भी आपको अपने बागों का प्रबंधन बनाए रखना है
5: जी जैसे हम मानवीय प्रवृत्ति है कि हम एक बार फल तोड़ते हैं तो अपने बागों को अपने खेतों को थोड़ी देर के लिए हम अनदेखा कर देते हैं जब तक नई फसल ना आए मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हमने फूल आने से लेकर फल लगने और फल लगने के बाद उसके तुड़ाई में जितना हमने देख रेख किया है उतना ही देख रेख हमें फल की तुड़ाई के बाद भी अपने बागों की करनी है क्योंकि यह समय होता है अपने बाग को अगली फसल के लिए तैयार करने का। और यदि हम इसमें अनदेखा करेंगे तो हम अगला जो फसल है शायद जो पिछली फसल है उसकी तुलना में हम कम ले पाए। इसलिए फल उत्पादन या फल की तुड़ाई के बाद भी हमें बागों का बहुत ही अच्छा प्रबंधन करना है। और इसमें बहुत सारी फसलें हैं हमारे, जैसे उत्तरी भारत तो जैसे आम, आम हमारी प्रमुख फसल है जिसकी तुड़ाई हो चुकी है, हमने लगभग जुलाई तक अपने आम को तोड़े हुए हैं। अब हमारी जो बाग है या आम के पेड़ है वो अगली फसल के लिए तैयार हो रही है। तो मैं किसान भाइयों को यही बतलाना चाहता हूँ कि ये समय है कि अपने पेड़ों को, अपने फल के पेड़ों को, और या समुचित रूप में तो ये बागों को हमें ऐसा बनाना है कि ये टिकाऊ उत्पादन करें या एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन करें जिसमें दोनों चीजों, एक तो बोलते हैं उपज और दूसरी है गुणवत्ता। जिन किसान भाइयों ने अभी तक न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं खाद नहीं डाला है अपने खेतों में, तो वो खाद की एक समुचित मात्रा जरूर उपयोग करें, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आजकल केचुए की खाद का भी उपयोग बढ़ा है, तो जैसे भी आपकी उपलब्धता हो आप 15 से 20 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें। और साथ ही साथ कुछ जैसे फर्टिलाइजर बोलते हैं कि जो इमीडिएट रूप में पौधों को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए एक निर्धारित मात्रा है, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं पेड़ों के लिए 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये जो नत्रजन है, फास्फोरस है और पोटास की मात्रा, इसमें हम एज वाइज बढ़ाते हैं और ये 10 साल में जाके एक फिक्स हो जाता है, जो बोलते हैं कि 1 किलो नत्रजन 1 किलो

0: पास और 500 ग्राम फास्फोरस के रूप में ये फिक्स होता है। तो 10 साल के बाद हम उसे को उस रेट से नहीं बढ़ाते हैं और 10 साल के ऊपर जो पौधा है उसमें ये फिक्स मात्रा में हम डालते हैं। और इसके डालने की यह विधि की पहले पौधे की कैनोपी को अच्छे से देख लें और जितने भी हमारे खाद है फर्टिलाइजर है उसको डालते समय ये ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें तने पे खादों का उपयोग नहीं करना है, तनों से समुचित एक दूरी बना ले। जैसे अपने एक पैर का एक उदाहरण बताता हूँ कि वहां पे हम स्केल नहीं ले जा सकते, तो अपने पैर को रखें जहां हमारा उंगली हो और लास्ट टो हो, तो वहां से आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि तने पे हम खाद या फर्टिलाइजर का उपयोग करें, हल्की खुदाई करके उस खाद को और उर्वरक को आप उपयोग करें। और ख्याल रखें कि जैसे बारिश का सीजन है तो बारिश ठीक है, लेकिन जैसे ही हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी का उपयोग जरूर करें। जैसे हमने खाद दिया और उर्वरक दिया उसके बाद पानी जरूर डालें पौधों में।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बागों का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे किसान जो है आने वाली फसल के लिए तैयारी कर सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि बाग में सूखी शाखाएं पड़ी होती है, रोगग्रस्त प्लांट जो है उनके भी पार्ट्स कई बार बाग में ही रह जाते हैं। तो तुड़ाई के बाद जो बगीचे की साफ सफाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी है?
0: यह बहुत ही नितांत आवश्यक है। जैसे हम बोलते हैं ना, घर में सैनिटेशन साफ सफाई ये रोगों को नहीं लाता है ना, तो उसी प्रकार हम अपने बागों की साफ सफाई करें। तो सड़े गले फल क्या होते हैं कि बहुत सारे कीड़ों को बुलाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को बुलाते हैं। यदि हम उसको वैसे ही छोड़ दें, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आम में अमरूद में बहुत सारे फ्रूट फ्लाई होते हैं, यदि हम वैसे छोड़ दें तो उसमें जो कीड़ों की संख्या पनपने लगेगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, जब भी बिना देरी किए हुए जितने भी आपके फल सड़े हुए रहे होंगे या जो गिर गए होंगे उनको आप तुरंत ही, जैसे कोई फल गिर गया हो जो आपके बाजार के लिए आपके खाने के लिए उपयोगी ना हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कीड़े हैं या बीमारियां हैं, उसको आप तुरंत ही बागों से हटाए और एक दूरी पे ले जाकर या तो बड़ा गड्ढा तैयार करें और उस तैयार गड्ढे में उसको बिल्कुल ले जाके आप मिट्टी में दबाना शुरू कर दें। और ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी करना है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात रखी कि टहनियां जिसमें बीमारियों का अंदेशा होता है या जिसमें कीड़े हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि ये शाखाएं अच्छे नहीं चल रही हैं, तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आपको लग रहा है कि सूखी डालियां हैं या आपको लग रहा है कि ये टहनी अच्छे से बढ़ नहीं रही है, उसके पत्ते अच्छे हरे नहीं है, तो वैसे टहनियों को आप एक नियमित लेंथ पे कट करें, जहां से वो हेल्दी ना लगे उस पूरे ब्रांच को आप कट कीजिए। काटने के बाद उसमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके फफूंद नाशक दवाई है, उस दवाई को एक पेस्ट, जैसे हम सिंपल तरीके से हम बोलते हैं कि पहले हमारे पास एक पेस्ट आता था उसको पाउडर फॉर्म में होता तो हम जैसे उसको पेस्ट बना के ब्रश करते थे, वैसे उसको पेस्ट बनाना है और उसको ब्रश में लगा के उस कटे हुए भाग में पूरी तरह लेप लगाना है। इससे क्या होगा, कोई भी फंगस है उसका फिर से उस पर प्रकोप नहीं आएगा। और किसान भाइयों को मैं इसी के साथ ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी टहनियां जो जमीन से लग रही हो, दूसरी है कि ऐसी शाखाएं जो छाया दे रही हो, तो ऐसे टहनियों को आप जल्द से जल्द निकाल दें। और जब भी आप ऐसे टहनियों को निकालते हैं काटते हैं तो उस जगह पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नमक फफूंदनाशक का जरूर उपयोग करें, ये संक्रमण को रोकता है, वहां से कोई भी संक्रमण को आने नहीं देगा।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे बाग में से तुड़ाई किसानों ने कर ली, बागबानों ने कर ली, और उसके बाद आता है एक प्रूनिंग का समय, वो कितनी जरूरी है और कैसे वो प्रूनिंग करनी चाहिए कि कहीं बहुत ज्यादा प्रूनिंग ना हो जाए जिससे कि हमारे बागों को नुकसान पहुंचे, पेड़ों को नुकसान पहुंचे? और फल की तुड़ाई के बाद जो प्रूनिंग है वो किस वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिए और किन शाखाओं को हटाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है?
0: एक एसेंशियल हम बोलते हैं कि जब भी बागों की बात आती है तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो शब्द है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग हम इंसानों में या अपने सर्विसेज में भी बात करते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम पौधों को भी ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उनको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना जिससे आगे चल के चाहे आम का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, नींबू का पौधा हो, ये अपना इतना आधार बना ले कि जो भी फल लगे उसको अच्छे से सहन कर पाए। यदि हम ट्रेन अच्छा नहीं करेंगे पौधों को तो उनकी बढ़वार किसी भी दिशा में जा सकती है, उनका आकार उनका फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि वह फलों के भार को सहन कर पाए। तो इसमें क्या होता है कि यदि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका जो रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट का जो एक स्पेस देते हैं वो मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, वो कोई भी दिशा में चलेगा, जिससे मशीन आजकल ट्रैक्टर चलाना है और बहुत सारे मशीनीकरण का उपयोग करते हैं अपने बागों में, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग हम इनिशियल ईयर में करते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक एक अच्छी ट्रेनिंग की।

0: जरूरत होती है, तो सभी चारों दिशाओं में शाखाओं को बढ़ाना, तो 1 मीटर की दूरी पे पेड़ को कट करना ताकि सभी शाखाएं चारों दिशा में अच्छे से फैल जाए, तो ये ट्रेनिंग का आधार है। दूसरा जो हमारा विषय है प्रूनिंग, प्रूनिंग हमें पौधों की प्रजाति या फसल के आधार पे निर्धारित करता है। जैसे आम है, आम में बहुत ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं में जो फूल लगते हैं वो पुराने शाखाओं में, हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली मैच्योर शाखाओं में आते हैं, जिसके लिए 8 से 9 महीने की मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। तो आम में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, प्रूनिंग उन शाखाओं को करनी है जो छाया दे रही हो। तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि उन शाखाओं को निकाले जो एक दूसरे के ऊपर आके वो छाया उत्पन्न कर रही हो, कि ऐसे शाखाओं को निकालना है जो वो अंधकार सा बना रहा हो, उसको हटाना है ताकि वहां पूरी तरह अच्छे से जो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है, इससे हम इन चीजों से निजात पाते। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना, और दूसरी की जो नीचे जमीन से लगी हुई शाखाएं उनको भी बिल्कुल निकालना, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। उसको नहीं निकालेंगे तो आप खाद पानी और जो भी चीजें करना है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि नीचे की शाखाएं क्या होती है, जमीन से लगती है, तो क्या होगा कि उसमें फल भी आ जाएंगे तो वो अच्छे मार्केट प्राइस या खाने उपयुक्त तो नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि नीचे की शाखाओं को बिल्कुल निकालें। एक हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि वाटर शक्कर, तो वाटर शक्कर क्या है? कई बार क्या होता है कि मूल वृंत रूट स्टॉक जो यूज करते हैं उसके नीचे से बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती है। किसान भाई क्या सोचते हैं, अरे इसमें बहुत अच्छा बढ़वा रहा है, इसको रखना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल उसको काट दीजिए, नहीं तो आपकी जो मुख्य शान स्टिक है, जो ऊपरी भाग है, वो आपका प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, और यही जो वाटर शक्कर है वो बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छी फसल नहीं मिलेंगी।
1: और पूरे मौसम में हम ये देखते हैं कि पेड़ ने मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व लिए होते हैं, ऐसे में हार्वेस्ट करने के बाद पोषक तत्व मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब। तो तुड़ाई के बाद सॉइल टेस्टिंग किसान को या बागवानों को किस तरह की जानकारी देती है? फर्टिलाइजर या उसमें जो बाकी के पोषक तत्व है वो किस तरीके की या कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, ये कैसे आधार तय हो पाता है, बेहतर रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी, पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं बात करूं कि अमरूद की या आम की, नींबू की, सभी फसल को एक उपयुक्त अनुपात में पोषण चाहिए। जैसे हम अपने लिए बोलते हैं कि पोषित फल खाना है, हमें वो अनाज खाना है जिसमें पोषण हो, तो उसी प्रकार हर फल के पौधे को पोषण की आवश्यकता है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो जो आज हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। किसान भाई अपने बागों में आपने अनुभव किया होगा कि कई किसान क्या होते हैं कि फसल लेते जाते लेकिन एक समय आता है जैसे 4 से 5 साल के बाद वो हमारे पास शिकायतें लेके आते हैं कि जी मेरा अमरूद था बहुत अच्छा फसल दे रहा था लेकिन आज नहीं दे रहा है, आम के बाग बहुत अच्छा फसल देता था लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त पोषण, उसमें से कम उपज है, कम गुणवत्ता वाले फल है, उसका कारण ये हो सकता है। इसलिए हमें पोषण का उपयुक्त अनुपात में हर समय या हर सीजन में हमें उपयोग करना जरूरी है। जैसे आपने बोला कि हम कैसे जाएं, कैसे पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करें, तो पहला तो होता है कि जब भी आप बाग लगाते हैं तो अपने जमीन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करवाइए, उसका क्या पीएच होगा, क्या आपका पानी सही है, क्या आपका जमीन सही है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, तो इसकी प्रोफाइलिंग तो हम बाग लगाने से पहले करते ही है। लेकिन क्या होता है कि हर साल हमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशन अपने बागों में लगाना जरूरी है, देना जरूरी है। जब भी हम फल लेते हैं तो उसमें जो हमारे बाग है या पेड़ है इन न्यूट्रिशन को, इन पोषण को उपयोग करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हम बोलते हैं कि हम फल तोड़ रहे हैं तो उसके रूप में वो न्यूट्रिशन जाता है। तो उनकी भरपाई करने के लिए जैसे सबसे अच्छा चीज तो है कि ठीक है आपका जमीन का प्रोफाइल आपके पास होता है, आपके पास रहता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को भी हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते कि ये सस्टेनेबल वे नहीं है, तो इसलिए हम मानते हैं कि जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग है, बीच बीच में हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप जैसे फसल नहीं है तो ग्रीन मैन्यूरिंग कीजिए, जैसे ढैचा लगाइए जो बीच में जो खाली जगह है उस, और उसको लगभग 30 से 35 दिन में पलटवार कीजिए, तो उससे क्या है ये हरित खाद के रूप में आएगी। पहला चीज, मूंग को भी लगाते हैं लोग, मूंग को भी हरित खाद के रूप में उपयोग कीजिए, ये क्या है कि ये नत्रजन फिक्स करने वाले हैं, तो इससे जो नत्रजन की मात्रा अच्छी होगी, और फिर जब आप पलटवार करते हैं तो उसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट भी आते हैं, तो आप हरित खाद है इसका उपयोग जरूर करिए। तो ये बहुत सारा जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, तो इसके तौर पे हम या हमारी जो निर्भरता है

0: गोबर की खाद या वर्मी पे उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है अपने बागों में पोषण देने का। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इन चीजों का आप उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि जिंक या बोरान की भी कमी होती है। जिंक और बोरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फलों में, खास करके जैसे अमरूद है तो बोरान होता है कि हम बोलते हैं कि फल फट रहे हैं तो बोरान का एक समुचित मात्रा होना चाहिए जमीन में। तो बोरान और जिंक की मात्रा भी बीच बीच में उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो साथियों वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें भी सही पोषक तत्व जो है वो सही समय पर मिलते रहे। और सिंचाई और ड्रेनेज की बात करें तो डॉक्टर साहब, बाग में हम कई बार देखते हैं कि पानी की कमी की समस्या भी होती है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी हो जाती है। तो डॉक्टर चवलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुराई के बाद इरिगेशन और ड्रेनेज मैनेजमेंट में जो है हमारे बागवानों को क्या ख्याल रखना चाहिए?
0: मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बारिश का सीजन होता है, जैसे अभी हमने देखा कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश हुई, तो उस समय क्या है, पानी का भराव ना होने दे, उनको जितना जल्दी हो सके अपने बागों से ड्रेन करके निकालना है, बिल्कुल खड़ा नहीं होने देना है सादे शब्दों में। दूसरा चीज है पानी की आवश्यकता। तो इस समय पानी को आप 10 से 15 दिन, जैसे भी आपके पास ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर या जो भी बेसिन इरीगेशन कर रहे हैं आप, फ्लड इरीगेशन जो खुला छोड़ने वाले पानी है उनको अवॉइड करें, इससे पानी की भी खपत ज्यादा होती है। तो समुचित मात्रा में पानी का उपयोग और पानी अपने बागों को देते रहे।
1: बिल्कुल, यानी पानी देना मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पानी की जरूरत को समझना असली मैनेजमेंट है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब बागों में फलों की तुड़ाई हो गई तो उसके बाद कुछ कीट और रोग भी होते हैं जो कि हमारे बाग में पीछे रह जाते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करें जिससे कि उन्हें फैलने से रोका जा सके? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कीट और रोग का नियंत्रण करना चाहिए बाग?
0: तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि फल की तुड़ाई होने के बाद भी वे अपने बागों में नियमित रूप से जाएं। और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अंगूर है, अभी उत्तरी भारत में अंगूर है तो उसमें एंथ्राक्नोज, पाउडी मिल्डू, डाउनी मिल्डू, ये पूरे अच्छे से आते हैं। फिर ऐसे आम में बात करें तो एंथ्राक्नोज, फिर पाउडी मिल्डू, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। जैसे अभी मैं बोलूंगा मिली बग, किसान भाई हमें मार्च में आएंगे और मिलेंगे और बोलेंगे कि वो सफेद कीड़ा आएगा, तो इन सब का मैनेजमेंट हमें अभी करना है। पहले अच्छे से जुताई करवा लीजिए अपने खेतों के, और जहां जहां कैनोपी एरिया है उसमें जैसे क्लोरोपायरीफास है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको वहां ड्रेंचिंग कीजिए, ताकि उसके जो अंडे हैं या जो लार्वी और जो बनेंगे वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। तो आगे जो आप फसल लेंगे उसके लिए काफी ही लाभप्रद होगा। उसमें कम से कम जैसे कोई फंगस वाली जो चीज आ रही है तो उसके लिए आप फंजीसाइड का उपयोग करें। और यदि आपको मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये क्या रोग है या क्या कीट है, तो आप अपने निकटस्थ जितने भी केवी के है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके जितने भी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह लेके एक उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक हो चाहे रोगनाशक हो उनका उपयोग करना है, ना हमें कम और ना ही ज्यादा।
1: तो हमारे जितने भी किसान मित्र या बागबान हमें सुन रहे हैं उनसे हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि फलों की तुड़ाई के बाद अपने बागों में प्रबंधन करें, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो भी हैं, जो समसामयिक कार्य हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, बगीचे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चवलेश, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब कोमल अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: अभी आप सभी ने सुना पुष्पा गोसाई का गाया हुआ ये लोकगीत।
1: और कोमल, अब हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम की जानकारी का, ताकि उसके अनुसार वो अपनी फसलों का प्रबंधन कर सकें। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास मौसम साफ रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: तो ये तो बात थी मौसम की, लेकिन इसके साथ साथ अपने किसान मित्रों को ये भी बता देते हैं शशि कि वो इस समय अपनी खेती में कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये धान की फसल की रोपाई और किस्म के अनुसार बाली निकलने और दाना बनने की अवस्था है, और ये जो चरण है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस समय में पानी की कमी होने के कारण से जो दाने हैं वो ठीक प्रकार से भर नहीं पाते, तो इसकी वजह से बालियों में दाने की संख्या और आकार दोनों घट जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों।
1: इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस समय कपास की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इनमें मीली बग, जैसिड माहू, सफेद मक्खी, रेड कॉटन बग, हरा तेला, भूरी सुंडी और बालों वाली सुंडी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों और तनों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और फल धारण क्षमता घट जाती है। रेड कॉटन बग के अंडों को नष्ट करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें और खेत के आसपास उगी घास को नष्ट करें।
0: किसान साथियों, इस समय गन्ने पूरी वृद्धि की अवस्था में है और तेज हवा या तूफान की स्थिति में फसल के गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। इससे बचाव के लिए गन्ने की दूसरी तीसरी बंधाई जरूर कर लें, और बंधाई हेतु सूखी पत्तियों का उपयोग करना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि वो पौधे को अच्छी तरह से सहारा देती हैं और जकड़ कर रखती हैं। खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे ताकि नमी संतुलित बनी रहे और फसल की बढ़वार प्रभावित न हो।
1: किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की, और अब किसान बहन भाइयों आपको इंतजार होगा आजादपुर मंडी के बाजार भाव का। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के भाव की।
0: सब्जियों की बात करें तो आलू 13 रुपए प्रति किलो, प्याज 32, टमाटर का भाव रहा 24 रुपए प्रति किलो, वहीं बैंगन 29 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 21 रुपए प्रति किलो, खीरा 24 रुपए प्रति किलो, घिया 11 रुपए प्रति किलो, भिंडी 20 रुपए प्रति किलो।
1: और अब बात करें फल के भाव की, तो सेब बिका 102 रुपए प्रति किलोग्राम, केला 19 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 70 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता 23 रुपए प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये आजादपुर मंडी का बाजार भाव।

0: और अब कोमल समय हो चुका है अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति लेने का। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि उनको आज का कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
1: feedback@gmail.com।
0: इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। किसान बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए तो डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया। जय कुमार, अंशा बाबू, मानु टीएस और रशदीप कौर की पुरुष मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनंतजीत सिंह और पारिनास धालीवाल ने निशानेबाजी की मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबेना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम महिला मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरा ने पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 16 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said, it is only when there is a spirit of service, folk or poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani has stressed the need for country's defence acquisition system to adapt swiftly to keep pace with the changing character of warfare. Addressing an event organized by a media house in New Delhi today, General Subramani highlighted the importance of the integration of technology, data and industry in strengthening the defense ecosystem. He stressed upon the need to have the means to sustain, replenish and repair weapons in the battlefield. Indian Railways has approved the introduction of a New Delhi train service between Kanpur Central Railway Station in Uttar Pradesh and Anand Vihar Terminal in Delhi, providing an overnight rail connectivity option between the two cities. Railways has also approved the construction of a 4-lane road over bridge at Alkapuri in Vadodara Division of Western Railway. The Ministry of Railways said the cost of the project is over 166 crore rupees and will be shared equally between railways and the state government. The ministry said the road over bridge will provide an improved and more effective crossing facility without disturbing railway operations. The government has reduced the basic customs duty, BCD, on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The deep depression over the Bay of Bengal crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering extremely heavy rainfall in several parts of Odisha. The system has moved inland and is gradually weakening. However, its impact continues to be felt across Odisha with heavy rain, waterlogging and landslides reported in several southern districts. Koraput, Nabrangpur, Malkangiri, Kalahandi, Nuapara, Balangir and Bargarh are likely to receive heavy to very heavy rainfall today, while other parts of southern and coastal Odisha may also experience intense showers. Human rights violations and socio-economic deprivation in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, were raised at the ongoing 63rd session of the UN Human Rights Council, UNHRC, in Geneva. Social activist Harleen Kaur said that the people in POJK have been on the streets for months demanding food, electricity, employment, better infrastructure and political representation. She said these peaceful protests have been met with excessive force, arbitrary detentions, communication blackouts and the use of anti-terror laws against peaceful groups. The Saudi-led coalition fighting Yemen's Houthis said that its forces had intercepted six ballistic missiles fired by the Houthis. The coalition said the missiles were aimed at the Saudi cities of Taif and Yanbu. Saudi Arabia also issued potential danger warnings in Makkah and Taif. And India won a silver medal in the mixed 4x400m relay at the Asian Games at Aichi Nagoya in Japan. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियाई खेलों के वुशु में रोशिबीना देवी ने देश को दिलाया रजत पदक।
1: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक।
0: सतनाम सलमान की जोड़ी ने डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक, बलराज सिंगल्स में चौथे स्थान पर।
1: निशानेबाजी में परिणाज अनंतजीत ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन चल ही रहा है खिलाड़ियों का रोशिबीना देवी से, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है। जापान एशियन गेम्स में आज रोशिबीना देवी ने वुशु में भारत को रजत पदक दिलाया। रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में यह पदक जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
2: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शिया ओयू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झांग ने दोनों राउंड में जीत दर्ज करते हुए 10-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। रोशिबीना का एशियन गेम्स में तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 17 साल की आयु में 2018 जकार्ता पालिमबांग गेम्स में कांस्य और हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक जीता था। रोशिबीना ने पदक जीतने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: 25 वर्षीय मणिपुर की एथलीट ने पहले क्वार्टर फाइनल में मकाओ की चू मानसिन को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया था। वुशु की सांडा श्रेणी में सेमीफाइनलिस्ट का कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाता है। रोशिबीना 2022 में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती थी। उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंत्यास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आखिर में स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन की झांग शिया ओयू से हार गयी। रोशिबीना का इरादा इस बार अपने पदक का रंग बदलना था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रही। हालांकि लगातार दूसरे एशियन गेम्स में रजत पदक जीतना उनकी क्षमता को दर्शाता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, रोशिबीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कल भी उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि वो स्वर्ण पदक देश के लिए लाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन भी दर्शाता है उनके दृढ़ संकल्प को। और विशेष, लगातार अच्छा प्रदर्शन है। आज भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक देश के नाम किए। क्या स्थिति है भारत की?
1: प्रशांत, अभी भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 15वें स्थान पर मौजूद है।
0: जी विशेष, वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: उधर भारतीय एथलीट सीमा कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करते हुए भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया है।
4: सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई। इससे पहले साल 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सीमा शुरुआती 2000 मीटर में सबसे आगे रही, लेकिन अंत तक आते आते वे तीसरे स्थान पर आ गई और भारत के लिए कांस्य पदक पक्का किया। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं जापान की नोजोमी तनाका ने रजत पदक अपने नाम किया। सीमा ने हांगकांग में 2024 एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सीनियर महिला रेस में और 2026 में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, एथलेटिक्स में ही एक अच्छी खबर आ रही है। एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। आज का ये दूसरा रजत पदक है। और विशेष, हम जानना चाहेंगे किन खिलाड़ियों ने ये पदक देश को दिलाया है।
1: प्रशांत, किरण मनु, जय कुमार, पुवामा, विशाल और विथिया की टीम ने भारत को पदक दिलाकर देश का मान और गौरव दोनों बढ़ाया है।
0: बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ी का। श्रोता आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, कल वो खेलते नजर आएंगे।

0: 2024 एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सीनियर महिला रेस में और 2026 में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: गौरव दोनों बढ़ाया है,
2: बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ी का। श्रोता आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, कल वो खेलते नजर आएंगे।
1: वहीं भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल्स स्कल्स में कांस्य पदक जीत लिया है, जबकि बलराज पवार पुरुषों की सिंगल्स स्कल्स के फाइनल में पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे।
0: पुरुषों के सिंगल्स स्कल्स फाइनल में चौथे स्थान पर रहे और पदक जीतने का मौका चूक गए। चीन के झीवेई डैंग ने स्वर्ण, उज्बेकिस्तान के खोलमूर जाएव ने रजत और जापान अत्सुया सकुरामा ने कांस्य पदक जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात निशानेबाजी पर। भारतीय निशानेबाजी टीम ने भारत को एक और मेडल दिलाया है। परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह की जोड़ी ने स्की मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। हालांकि भारत की इस जोड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने फाइनल में 44 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। चीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। अनंत और परिनाज का ये इस एशियन गेम्स का दूसरा मेडल है।
1: और प्रशांत, इससे पहले अनंत ने पुरुष स्की टीम और परिनाज ने महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 15वां मेडल है। अनंत और परिनाज ने 138 का स्कोर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्केट स्पर्धा में भारत ने यह कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले भारत की पुरुष स्की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। भवतेक सिंह गिल, अनंजिंग सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की तिकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 346 का स्कोर बनाकर ब्रॉन्ज जीता था। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रही थी और मेडल लाने से चूक गई थी। इस स्पर्धा के टीम फाइनल में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी के लिए भी निराशाजनक अंत हुआ था।
2: जी बिल्कुल, मनु भाकर से सबकी उम्मीदें थी। हालांकि जो भी प्रतियोगिता में मनु भाकर होती है वो पदक जरूर भारत के नाम करती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने में असफल रही। और अब बात कबड्डी पर। एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जापान पर 50-25 से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने ग्रुप ए के तीनों मुकाबलों को अपने नाम कर लिया है। गत विजेता भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है। भारत का मुकाबला कल नेपाल से होगा। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 42-21 की जीत के साथ की थी, जिसके बाद ईरान को 37-23 से हराया था। वहीं आज भारत ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी और दूसरे हाफ में भारत ने 18 जबकि और बांग्लादेश ने 12 पॉइंट जोड़े।
1: दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। चीनी ताइपे के खिलाफ भारत ने 3 बोनस पॉइंट्स और 6 ऑल आउट पॉइंट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों ने 9 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल दर्ज किए। भारतीय पुरुष टीम ने कल बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इस नतीजे से टीम का मेडल भी सुनिश्चित हो गया था। भारतीय पुरुष टीम कल अपना सेमीफाइनल मैच थाईलैंड से खेलेगी।
2: और अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज परवीन ने राउंड ऑफ 16 में तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा से वॉकओवर मिलने के बाद महिलाओं के 65 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। परवीन अब मेडल सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर है। वहीं अलग अलग स्पर्धाओं में कई भारतीय मुक्केबाजों ने स्पर्धा किया, लेकिन आज की क्या तस्वीर रही विशेष?
1: प्रशांत, अगर आज की बात करें तो साक्षी चौधरी को महिलाओं के 51 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्वार्टर फाइनल में परवीन का मुकाबला उज्बेकिस्तान की मौजूदा वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नवफखोर खमीवदोवा से होगा।
2: और अब बात स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। एशियाई खेलों में आज स्क्वाश में भारत का दिन शानदार रहा, जिसमें 6 खिलाड़ी सिंगल्स और मिक्स डबल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
0: महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। ये दोनों खिलाड़ी अब क्वार्टर

0: में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने सिंगापुर की ओ योंग वायलिन को सिर्फ 19 मिनट तक चले मुकाबले में 3-0 से हराया। इस युवा खिलाड़ी ने शुरू से ही मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और अपनी प्रतिद्वंदी को जमने का मौका नहीं दिया। वहीं तन्वी को सिंगापुर की ओ योंग वायलिन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला गेम 5-11 से हारने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अगले 3 गेम 11-4, 11-5, 13-11 से जीत कर 3-1 से जीत हासिल की। वहीं भारत के 2 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लग्जरी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 मिनट में 3-0 से जीत दर्ज की। उन्होंने ये मुकाबला 11-5, 11-6, 11-0 से जीता और अब उनका सामना जापान के यूनो सुगुए से होगा। दूसरी ओर वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 1 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 11-9, 8-11, 11-6, 15-17, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। मिक्स्ड डबल्स ड्रॉ में अनुभवी जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज को 2-0 से हराया। एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय जोड़ी कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जैमिका अरिबाडो का सामना करेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: स्क्वैश में शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत, जहां सभी 4 भारतीय सिंगल्स खिलाड़ियों और मिक्स डबल जोड़ी के अंतिम 8 में पहुंचने के साथ भारत ने आईची नागोया में अपने स्क्वैश अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
2: बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और कल भी या आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि स्क्वैश खिलाड़ी जो है भारत को कई पदक दिलाएं। और अब बात हॉकी पर भी कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज एक तरफा मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से शिकस्त दी। ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। टीम ने टूर्नामेंट का आगाज इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की धमाकेदार जीत के साथ किया है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 16-1 से रौंदा था। साउथ कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने मैच का अपना पहला गोल 4th मिनट में दागा। सिलानंद लाकरा ने भारत के लिए पहला गोल किया। भारतीय टीम का मुकाबला 26 सितम्बर को जापान से होगा।
1: और अब चलते चलते बात करते हैं क्रिकेट की प्रशांत, जहां एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम अपना अभियान 28 सितंबर को शुरू करेगी। वो क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। कैसे देखते हैं भारतीय टीम, कैसा प्रदर्शन रहेगा और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी?
2: देखिए, विशेष जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सशक्त है। इसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी भारत को दिलाया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो टीम में संजू सैमसन है, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज है जो कि नंबर 3 पे आते हैं, अभिषेक शर्मा है, उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे। तो लगातार जो बैटिंग स्ट्रेंथ है टीम का, मिडिल ऑर्डर, वो भी बहुत ही सशक्त नजर आ रहा है विशेष।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, और गेंदबाजी में भी भारतीय टीम ने इस बार जो टीम चुनी है वो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जो है भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे और भारतीय टीम पहले से ही गोल्ड मेडल जीत चुकी है एशियन गेम्स में, तो ये अनुभव जो फाइनल खेलने का रहेगा ये भी उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। महिला टीम ने अपने मेडल को अभी जो है डिफेंड किया,
2: और विशेष इस पे ये भी कह सकते हैं कि बैक टू बैक चैंपियंस रही है। भारत वर्ल्ड कप जीता है लगातार और स्वर्ण पदक जीता है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है एशियन गेम्स में, तो यही उम्मीद की जाए कि इस वर्ष भी भारत को पुरुष टीम भी पदक दिलाए, वो भी स्वर्ण पदक।
1: बिल्कुल प्रशांत।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में, दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिमा ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
3: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
4: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
5: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
4: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
5: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
6: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
5: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षत वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
8: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
7: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
9: The character of war,
10: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सके।
7: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
11: गहरे डिप्रेशन में कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों

0: को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices.

0: भगवत भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: गंदा मामा ढूंढ के धुएं पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: वो गाना था 1951 बाबूलाल चतुर्वेदी को यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से।
0: संगीतकार रवि,
2: हम रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर दो, तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं एक लाइन सुना करते दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के, मैं उसकी टून बना ली चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1949 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फनी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनि और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा ऐसी ही कुछ फिल्में थी।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े।

और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने तीन फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई, जिसके गाने आज भी हिट।

विकास द्वारा वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत डगाइस द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
1: बहुत ही बुरा किसान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकली सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: ए गुड बुक ओपन्स ए विंडो ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। इट इनवाइट्स अस टू थिंक, नॉट ओनली टू थिंक, टू क्वेश्चन, नॉट ओनली टू क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स टू लुक एट फैमिलियर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव।
0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता

छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

वेद भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। नवा शेर का तरंग तुमने ही छेड़ा है, दिल के तार पर मोहब्बत का साज तुमने ही छेड़ा है। परेशान करते हो क्यों, क्यों बनाते हो बहाने, शिकारे फूलों के चले हैं सुनाने, तेरे मेरे ये प्यार के फसाने।

आंखों से पर्दा न कीजिए, चांद से चेहरे को नुमाया कीजिए। हथेलियों की हिना पसुरख रंग चेहरे पे आने लगा है, हया की लाली का असर छाने लगा है। इस पर्दे में वो हुस्न का आलम है इलाही, बेपर्दा वो हो जाए तो क्या जानिए क्या हो।

इंतजार किरात फिर मुख्तसर होगी, चांद निकलेगा ये नरगिसी निगाहें शाद होंगी। वक्त रुखसत है इस प्यार से देखा न करो, फिर आएंगे वादे पे एतबार करो।

0: सदियों के पल लम्हों में गुजरे हो जैसे, सात रात गुजर जाती है ऐसे। चलो वादा करें कि ख्वाब में ना आएंगे, एक दूजे का चैन करार लौट आएंगे। बिछड़ के भी न बिछड़ेंगे ये वादा रहा, आंखों में बस एक तसव्वुर संभाल लें, प्यार के मोतियों को ख्वाब बना लें। सो हसरतों से पूछना मेरा कि जाओगे, उनका वो एक नाज से कहना कि हाँ चले।
1: और कुछ देर ठहर

के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।